अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटस।

कै मन लाजुम रस अवरा पै कै मन लाजुम रस। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई जो मन दी बिरथा है ये वाहगुरु अगे आख किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा मन दी गल लोकां पास करदा है, मन लोकां पास फरोलदा है। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कडास। ये अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वाहगुरु अगे बेनती कर जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच इस शब्द विच ऐसी प्रेरणा

करुणालय है, अर्थालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जग गुरु, हे संसार ताप हरणे करना में सब दुख हरो।

सतगुरु नानक प्रगट होया मिट्टी धुंद जल ज्ञान होया ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पर होया जी बनी जाए नदी।

मार्गदर्शन की स्त्रियां मर्दाना पटने शहर दिया गलिया से बाजारा फिर मार्ग की बिती रविदार इसके कोल दान देने वाले ने बख्शिश की थी मर्दानिया ए अमर वस्तु पर बड़ी हैरानी है इससे देने वाला ही कोई नहीं।

अद्भुत माही का पाकर वाला दिन है कई साल पता वस्तु मिल जाए फिर साझा बैठ गया सब दान को कीता सब कीर्तन कीता से सुनिया सपना हो जाएगा करो अरदास जिन्हें धरती में फूटे है और पानी जरूर मिले जिन्हें धरती में फूटे है और पानी मिले जिन्हें खोजिए है और मार्ग है जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है और ये अरदास मेरा धन गुरु नानक पर पहले सेवक बोलेगा पीछे प्यार ना सारे बोलो

जुगाल सदसन का रखा उसत कर कर जीवा नानक नामा महारस मीठा अंदिन मंत्र पुस्तक करया करो भाई गुरु जी पुस्तक मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सुहेला पुस्तक गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते जी वाहेगुरु ने पुत्र की दात दिती है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओदे नाल प्यार जरूर करो जिन्हें पुत्र बख्शिया है आखिर जी गुरु बाबा जी कह लगे निंदा करनी है अपनी करो उस्तुत करनी है गुरु दी उस्तुत करो ये गुरुमुख है ये गुरुमुख दी चाहिए तो कह रही सात संगत यह जहां वचन ना बोलिए जिसे किसी का मन दुख है हरी जी ने किया सबना मन माणिक ठाहण मूल मचांगवा जे तो प्रिया जी सिके तो न छाई फिर गुरु नानक दास जी जेदा गुरु इतना मिठा हो सिख तो कदे नहीं तोड़ा न पड़े प्यार भरे बचन चंगे बचन करो भाई चंगयाई दुनिया में बढ़ लेंगी सिख दी ये ड्यूटी ड्यूटी है आप जपो अमरे धाम की।

कोई भी कीर्तन कोई भी रहन सबाई प्रवान नहीं जब तक भाई गुरदास जी की बाणी ना पढ़ी जाए। गुरु अर्जन साहब ने वर दिता भाई साहब जो तक आप दी वार नहीं पढ़ी जाएगी कीर्तन संपूर्ण नहीं होगा। भाई गुरदास जी की जो बाणी है इसनों गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी आख्या जाता है। दुनियावी रिश्ते ये दुनियावी प्यार है

हुए हर जन की तहतिस हुए हर जन की जो हर हर नाम जो हर हर नाम जो हर हर नाम आए

हर आप जोड़ बिछोड़ा हर दिन को दूजा को दूजा हर दिन को दूजा हर दिन को दूजा होना हर दिन को दूजा।

I have so many flaws in me. मैं किमें divine हो सकता हूँ? पर जिसनु पता है कि तुसी pure divine ही divine हो, you cannot be anything else. उसनु ये पता है कि तुसी परमात्मा ही परमात्मा हो. वो गुरु है, वो सद्गुरु है, जिसनु जो साडे शरीर नु नहीं देखता, साडे संस्कारां नु नहीं देखता, साडे मन दे ख्यालां संकल्पां नु नहीं देखता. बहुत डीप डाउन जो असी हां, जो साडी असलियत है, उसनु देखता है, वो है आत्मा ही आत्मा. पांच तत् मिलकाया गिनी, तिसमें राम रतन ले चीनी. उस दे विच जो राम रतन है, गुरुदेव उसनु देखते हैं कि ये ते राम रतन है, ये ते आत्मा परमात्मा है. तो वो गुरु ही है जो साडा परम तोड़ सकता है. हुण परम नु तोड़न दे वास्ते गुरु नु की कुछ करना पैंदा है? गुरु नु वो तमाम चीजां दी मौत करनी पैंदी है, उन्हां तमाम चीजां नु मारना पैंदा है जिहड़ियां उस परम नु पैदा करन दे विच सहाई हन, परम नु पैदा कर रहियां हन. अते असलियत नू पहचानन दे विच जो जो भी रुकावट है, गुरु ही उना रुकावटा नू दूर कर सकता है, इंसान खुद नहीं कर सकता. क्योंकि जिहड़ा खुद परम च है वो किवें करेगा? ये तो इस तरह गल हुई ना कि कोई अपने बूटा दे तस्मिया नू पकड़ के अपने आप नू तहां उठाना चाहे, ये किवें हो सकता है? नहीं हो सकता. हुण जो एक बादशाह दा बच्चा बैगर बन गया है और उसनू पता ही नहीं कि वह बादशाह दा बच्चा है, वो इस परम नु किवें तोड़ सकता है? वो तो नहीं तोड़ सकता. कोई होर ही उसके परम नु तोड़ सकता है जो उसनु जानता है. इसे तरह जो असी बन चुके हाँ, उस दे विच असी अपनी एक हस्ती कायम कर ली है और वो साड़ी हस्ती इतनी पक चुकी है जिसका नाम है होमे. हरेक इंसान की एक हस्ती है और वो अपनी हस्ती नु ही संभालता फिरता है. उसनु कोई बुरा कहे तो उसनु हर्ट करता है क्योंकि उसकी होमे नु हर्ट करता है. वो सोचता है मेरी ये हस्ती है और मैनू इसने आ आख्या है. वो किते फेल होवे किसे चीज ता उसनु हर्ट करता है. जितना भी दुख है वो होमे नु ही है क्योंकि होमे साडी हस्ती है. पर वो असल हस्ती नहीं है, वो एक फेक हस्ती है. ओ रियल सेल्फ नहीं है, वो सूडो सेल्फ है. अते ओ सूडो सेल्फ नू असी चाहने हां एक ते मर ना जाए, इसका नुकसान ना हो जाए, एक ते छोटा ना हो जाए. बस उस केवल होमे दे कारण ही असी अपनी जिंदगी दे विच सां नहीं लेंदे. अगां तो अगां वधी जाने हां, वधी जाने हां. सिर्फ होमे नू ही फैलाना चाहने हां, होमे नू जींदी रखनी चाहने हां, होमे नू ही पालदे पोसदे रहने हां. क्योंकि असी सोचते हां कि आ है मां, आ मैं हां. अते गुरु महाराज जी ने उस एक जो गलत हस्ती है उसकी मौत करनी है ताकि जो असल हस्ती है वो प्रगट हो सके. हुण सवाल ये पैदा होंदा है कि एक शख्स है जो अपनी असलियत नू लभनी चाहता है, वो आंदा है गुरु दे पास. ते गुरु दे पास जदों आंदा है ते जिहड़ी इक अपनी वहम च भरम च हस्ती बनाई बैठा है उसनू गुरु नू तोड़ना पएगा, उसनू गुरु नू खत्म करना पएगा. जिहड़ी कि उसने इल्यूजन दे विच अपनी एक परसनैलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट कीती हुई है, अपना एक सैल्फ क्रिएट कीता होया है, जिहड़ा गुरु ने उसनू खत्म करना है. इस करके गुरु ये आखदा है भई तू मरन नू तैयार है, तू मरन नू तैयार है, आपा चीनन दे वास्ते तेनू मरना पएगा. आपा चीनन दे वास्ते तेनू मौत कबूल करनी पएगी. पर ना ते ओ फिजिकल मौत है. ओ मौत केड़ी है? ओ उस चीज दी मौत है जो के वास्तव च है ही नहीं, लेकिन एक परम करके पैदा हुई ओ है, असलियत च ओ है ही नहीं. इस करके गुरु बाबा जी आखदे हैं

अत कल्याणकारी अत सुखदाई अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तां चंगा ही है, रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है। नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने हार होइए। अपना बोलिया आप सुन।

जन कब हूं नहाए। ताल जो जाने पाशा, ताल जो जाने पाशा, ते जन कब हूं नहारे, सो कदे न

0: और न मांगत हो तुमसे कश चाहत हो के तुम्हें सोई की जाए।
1: शत्रुन सो आते ही रण की जय, तुझ में रतो सास
0: की जय।
1: संत सहाय सदा जग में
0: के पागर श्याम ने
1: संत सहाय सदा जग में के पागर श्याम ने देश मां पर मोहे है, देश मां पर मोहे है, सब सर मन ते कब हूं न करो। देश वा पर मोहे है, सब सर मन ते कब हूं न करो। न डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। न डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिखाओ अपने ही मन को लाल जहां को काउ चुरा, और सिखाओ अपने ही मन को ए लाल।

अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी। अस खिलौना मेरा तो नाम गोबिंद सिंह, अस खिलौना सोड़ी राय। Yeah.

को दान न लागत निको, आन को दान न लागत निको, आगे भले इन्हीं को दियो, आगे भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और

धन है सब ही इन्हीं जब्त जिते इन्हीं के प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सुदान करे अग आग टे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा फुल काम भरे इन्हीं की कृपा फुल काम भरे इन्हीं के प्रसाद को विद्यालय इन्हीं के प्रसाद को विद्यालय इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे इन्हीं की कृपा निर सके हमें